काम आना किसी के है एक बंदगी, एक बार ही मिलती है ये जिंदगी। काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

सदा उसकी मौज में, खुश रहे जो सदा उसकी मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: कपिल दास है। तेरी ममटी ऊपर पंछी बैठ राग बिरहा लाप देने, तेरी ममटी ऊपर पंछी बैठ राग बिरहा लाप देने, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे बिना तेरे ताले तो लैके इसी तक चंगाले गए ने, हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तोड़ दी हवांक आउंदी है, हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तोड़ दी हवांक आउंदी है, डोगी गेट ते सिर सुट के सौंदा जब बुथी ऊपर चुक्की रोंदा है, डाकिया डाक सुटन वक्त शरबत जा चान उड़ीकदा है, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। तेरे बंद देख तेनु बंद देख कोई किराए ले मंगदा कोई खरीदना लोचदा है, तेनु बंद देख कोई किराए ले मंगदा कोई खरीदना लोचदा है, मैं त्रवक जांदी हाँ रोंदी हाँ तेनु पराए हाथ किवें सौंदे हाँ, मैं त्रबक जांदी हाँ रोंदी हाँ तैनू पराए हाथ किवें सौंप देवां, तू मेरे सुफनियां दा घर मेरे प्यार दा तू ही साक्षी है, तू मेरे सुफनियां दा घर मेरे प्यार दा तू ही साक्षी है, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, मेरे पुत्र दा घर भी प्यारा मेरा अपना है ना पराया है, मेरे पुत्र दा घर भी प्यारा मेरा अपना है ना पराया है, उत्थे रह के मैनू अपने पण वर्गा सुकून महसूस नहीं हुंदा, देश विदेशी बन पुत्र दा घर कोसा कोसा नहीं लगदा, देश विदेशी बन पुत्र दा घर कोसा कोसा नहीं लगदा, ओ उदास रोशनियां दा घर होटल वांग वक्ती लगदा है, ओ उदास रोशनियां दा घर होटल वांग वक्ती लगदा है, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, मेरे जिंदे जी तक तू मेरा ही है मेरी ही मलकियत है, मेरे जिंदे जी तक तू मेरा है मेरी ही मलकियत है, मैं फिर धूफ अते दीवे नाल तेरी आरती उतारनी है, कोसी कोसी धुप च बैठ पंछियां दा राग मुलाहार सुनना है, कोसी कोसी धुप च बैठ पंछियां दा राग मुलाहार सुनना है, अमरी छत नीचे तेरी निग्गी बुकल च आखरी नींद सोना है, अमरी छत नीचे तेरी निग्गी बुकल च आखरी नींद सोना है, मैं जानती हाँ कि मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, मैं जानती हाँ कि मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है, बहुत उदास है। धन्यवाद।
1: ਮੇਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਗਿਓ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਬੇਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਥੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਰੁਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੁਸੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ।
2: ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਰੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੱਕ ਦੇ ਗਿਓ ਨੈਣਾ ਨੂੰ